आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहले तिथि तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 22 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है। लीजिए कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

कार्यक्रम इनसे मिलिए में सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय होगा खेती बाड़ी के साथ पेड़ पौधों की नर्सरी से किसानों की आमदनी में वृद्धि। रतन सिंह से अशोक कुमार की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी।

शाम 7 बजे किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। 6:20 पर शाम को आप सुनेंगे माटी के स्वर कार्यक्रम में गोपाल धानुक और करीम खां खेजड़ला के गाए कुछ लोकगीत। शाम 5 बजे युवा दोस्तों का कार्यक्रम होगा युवाणी, और 5:30 पर बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत।

रामचरित मानस गान आप सुनेंगे 9:10 पर सुबह और 9:20 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आप सुनेंगे छोटे मजीद शोला और मजीद शोला की गाई कुछ कव्वालियाँ। फिल्म संगीत आपको सुनाया जाएगा सुबह 10 गाने पुराने ज़माने के में और 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तरह ने नए। इसके साथ ही शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और इसके अलावा फिल्म संगीत में आप सुन सकते हैं रात 8 फिल्मी गज़लें या कव्वालियाँ और 8:30 पर रात को सुनेंगे गाने नए ज़माने के।

0: कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर नई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत प्रदेश के 5 सरहदी जिलों के 1200 से अधिक गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर आज और कल आंधी बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री कई नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। वे सबसे पहले जोधपुर पहुंचेंगे, जहां उनका विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन का कार्यक्रम है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसलमेर में 67 करोड़ रुपए की लागत से नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। जोधपुर से रेल मंत्री जालौर जाएंगे, जहां वे भुज नई दिल्ली रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन राज्य भर के कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत से जिले में खुशी का माहौल है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
2: जालौर जिले को दिल्ली से सीधा रेलवे सेवा जोड़ने का अब सपना साकार हो रहा है। जिले के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ये गाड़ी प्रतिदिन जालौर जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में इसका ठहराव रहेगा। जिले वासियों के लिए सीधा मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर और दिल्ली के लिए सेवा उपलब्ध रहेगी। वहीं गुजरात की ओर जाने वाले लोगों के लिए धानेरा, भीलड़ी, भरूच, गांधीधाम, अंजार के लिए यात्री गाड़ी शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है। कप्तानगंज कलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर।
1: रेल मंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पाली भी जाएंगे। श्री वैष्णव कल जयपुर में रोजगार मेले में भाग लेंगे, जहां वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। 5 देशों के विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ये बैठक की। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के मद्देनजर और विभिन्न चुनौतियों से निपटने की दृष्टि से भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भविष्य में सुधार करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता को देशवासियों का सामूहिक दायित्व बताया है। उन्होंने कहा कि ये केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जन जन का आंदोलन है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान आकाशवाणी नागौर का। ये चिरवी चैनल है। 9:20 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए चंद कव्वालियाँ। पहले सुनिए छोटे मजीद शोला की गाई ये कव्वाली।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: आकाशवाणी नागौर के सिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: लीजिए अब सुनिए मजीद शोला की गायिका कव्वाली।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे कुछ कुछ कव्वालियाँ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चहर से बोल रहे हैं। सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत सुनिए भेंटवार्ता। विषय है खेतीबाड़ी के साथ पेड़ पौधों की नर्सरी से किसानों की आमदनी में वृद्धि। उन्नत किसान श्री रतन सिंह से बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार गोयल।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री रतन सिंह जी, जो कि प्रगतिशील कृषक हैं और नागौर में यहाँ श्री कृष्णा नर्सरी के नाम से अपनी नर्सरी भी चला रहे हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं। राम राम साहब।
2: राम राम सर। राम राम।
1: तो रतन सिंह जी, देखो आप प्रगतिशील किसान भी हो और जमीन भी है आपकी। कितनी जमीन है? लगभग
2: 25-30 बीघा है।
1: अच्छा, 25-30 बीघा जमीन है। तो खेतीबाड़ी में आप क्या करते हो?
2: खेतीबाड़ी में फसल बोते हैं।
1: हाँ।
2: मूंग है, बाजरी है, ज्वार है, ग्वार है।
1: अच्छा, और इसके अलावा आप जो नर्सरी चला रहे हो, तो ये जानना चाहते हैं कि भाई ये नर्सरी बहुत अच्छी एक चीज है, बहुत अच्छा आपने ये लाइन पकड़ी है। तो ये आपको कैसे विचार आया, कब आया कि भाई अपन को नर्सरी चलानी चाहिए?
2: ये पहले से ही मैंने तो फॉरेस्ट में नौकरी की थी और फिर ही इनमें पर्यावरण का भी है अच्छा और पुण्य भी है। पेड़ पौधे हम बेचते हैं हमारे लिए, लेकिन लगाने वाला है तो वो भी लगाएगा तो पैसा दे के ले जाएगा तो भी फल खाएगा या जानवर बैठेगा और पुण्य उनको मिलेगा तो एक पैसा हमारे को भी मिलेगा।
1: मतलब ये जो है पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छा है, हरियाली भी है, सब तरह के पौधे हैं, फलदार भी हैं और छायादार भी हैं।
2: सब तरह का पौधा है, फलदार, छायादार।
1: हाँ।
2: जो डेकोरेशन के लिए।
1: हाँ। अच्छा, आपके जो जमीन है, मतलब जो खेतीबाड़ी की खेती की जमीन है, वहाँ भी आप ये पौधे वगैरह वहाँ डेवलप करते हैं? कैसे, क्या मतलब?
2: वहाँ तो सर हमारे ऐसी बात है, हम तो यहाँ नागौर रहते हैं, जाके खेती करते हैं और फसल बोते हैं देसी खाद डाल के और अच्छी पैदावार लेते हैं। बारिश अच्छी हो जाए जब तो, और कुआ ट्यूबवेल है नहीं।
1: अच्छा, ट्यूबवेल नहीं है?
2: नहीं है जी।
1: अच्छा, तो बारानी खेती होती
2: है? बारानी खेती होती है, फसल अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है जब देसी खाद डालते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: फसल अच्छी होती है।
1: तो मतलब ये तो खेती बाड़ी के साथ साथ आप ये नर्सरी का काम भी अलग से कर रहे हो?
2: जी सर।
1: तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, इस काम के बारे में, किस किस तरह के आपके पास पौधे हैं, किस किस वैरायटी के पौधे हैं? और
2: पौधे तो हमारे पास सब वैरायटी है, हजारों तरीके तरह के पौधे हैं, जैसे फलदार है, आम है, अमरूद है, जामुन है, शहतूत है, चीकू है, जो भी फलदार है, पपीता है, और छायादार में सब तरह का पौधा है, और डेकोरेशन के लिए सब तरह का पौधा है, इंडोर आउटडोर सब भी है रखते हैं।
1: कुछ पौधों के नाम बताइए।
2: कुछ पौधे डेकोरेशन वाले, क्रोटन है, मान लो मोर पंख है, और ये अपने मधुकामनी है, जो भी है, छोटे मोटे गुलाब है।
1: अच्छा अच्छा,
2: कई तरह के पौधे हैं जी।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि भी ये पौधों की एक्चुअली क्या है कि देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो नर्सरी में भी आपके बड़ी तादाद में पौधे होते हैं, तो वो पौधों को सबकी देखभाल करना ताकि वो सुरक्षित रहें और जो लेके जाए उसके यहाँ लग जाए, तब तक आपको, जब तक कि वो ले जाने वाला उसको अपने यहाँ लगाए नहीं, तब तक उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो वो किस तरह से देखभाल करते हैं और इस काम में आपके साथ साथ कौन है परिवार में, आपके कौन कौन सदस्य हैं, वो किस तरह से सहयोग करते हैं?
2: परिवार में हमारे बच्चे हैं और पोते स्कूल जाते हैं, फिर वो भी आ जाते हैं और सहयोग करते हैं। एक दो आदमी रखते हैं लेबर भी, और वैसे मैं 24 घंटा वहीं रहता हूँ और पानी पिलाते हैं दिन में 2 बार, पौधा कोई मर न जा, और निराई गुड़ाई और चेंजिंग करना, ट्रांसफर करना इधर उधर, ये भी सब करना पड़ता है। जले हुए पौधों को अलग करना पड़ता है और अच्छे पौधे हैं सुरक्षित, उनको पानी पिलाना पड़ता है।
1: हाँ, तो ये जो है आप नर्सरी में विभिन्न तरह के पौधे आप रखते हैं, लोग लेके जाते हैं, तो किस तरह के पौधे ज़्यादा यहाँ बिकते हैं नागौर में?
2: आज पहले तो देखो एक नीम है, ऐसा ही ज्यादा कोई कांटीले जैसे नहीं बे बमूल ऐसे बिकते थे, खेर है। आजकल तो लोग सब है ना पौधे फलदार ले जाते हैं, छायादार ले जाते हैं, सब तरह के ले जा रहे हैं।
1: सजावटी पौधे भी ले,
2: सजावटी पौधे खूब ले जाते हैं। अच्छा। सिटी में खूब ले जाते हैं, हर डिपार्टमेंट हर ऑफिस में ले जाते हैं, और
1: तो ये
2: हमारी नर्सरी है तो रजिस्ट्रेशन है काफी टाइम से।
1: तो ये जो आप बताएं कि जो नर्सरी अगर कोई जैसे आप जो डेवलप किए हैं इसके लिए लगभग कितनी जगह चाहिए और कितना इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है किसी व्यक्ति को भी अगर नर्सरी चलाना है, पौधे कहाँ कहाँ से आप मंगाते हैं?
2: पौधे हमारे आंध्रा से आता है, पूना से आता है,
1: अच्छा
2: और कुछ थोड़ा बहुत यूपी से ही मंगाते हैं, और लोकल पौधे अपने पुष्कर से ही आते हैं, कुछ हम
1: अच्छा
2: तैयार करते हैं,
1: अच्छा अच्छा
2: हम भी तैयार करते हैं पॉलिथीन भर के, बीज लगा के, कटिंग लगा के।
1: अच्छा। तो देखिए आपकी उम्र तो अभी कितनी होगी इस समय?
2: 73 पार हो गई।
1: तिहत्तर पार हो गई। आपने नौकरी भी की आप बता रहे हो, तो नौकरी करने के बाद रिटायर होने के बाद फिर अब आप इससे जुड़ गए हो पूरी तरह
2: बस
1: से?
2: इनसे ही है, नौकरी करने के बाद मैं 24 घंटा यहीं रहता हूँ, घर पे तो सिर्फ
1: अच्छा।
2: खाना खाने के लिए जाता हूँ।
1: और देखिए आप हमारे रेडियो के आकाशवाणी के बहुत बढ़िया लिसनर हैं, बहुत बढ़िया श्रोता हैं, पूरे कार्यक्रम सुनते हैं। और जब हम आपकी नर्सरी पे हमने विजिट की थी तो हमने देखा था कि आप रेडियो सुन रहे, मोबाइल पर जो हमारा आकाशवाणी केंद्र नागौर है उसके कार्यक्रम सुन रहे थे, तो
2: बिल्कुल, मैं
1: उससे हमें
2: तो
1: अच्छा लगा कि भाई हमारे बहुत ही एक जागरूक श्रोता हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये रेडियो का शौक आपको कब से कैसे है और क्या क्या सुनते हैं आप?
2: रेडियो का शौक तो मेरे पहले से ही था, पहले ट्रांजिस्टर होता है ना,
1: जी
2: अब तो आजकल ये फोन में आ गया,
1: हाँ
2: तो ये हम तो समाचार तो जरूरी सुनना ही है, दिन में 3 टाइम 4 टाइम, और सुबह 9 बजे वाला 10 बजे वाला प्रोग्राम आता है, और शाम को आता है किसानों का प्रोग्राम, खेती बाड़ी का सब सुनता हूँ।
1: और कुछ हमारे फोन के कार्यक्रम भी होते हैं जो फोन पर हम फोन कॉल पे लेते हैं, उन पसंद के गीत लोकगीत सुनाते हैं,
2: हाँ
1: हेलो
2: हाँ
1: गोरबंद वगैरह
2: हाँ हाँ वो भी देखते हैं,
1: सुनते हैं।
2: हाँ सुनते हैं, देखते हैं, मतलब कोई दूसरा
1: तो कभी आपने कोशिश की फोन लगाकर भाई अपनी फरमाइश बताने की?
2: की, मैंने कई बार की, लेकिन वहाँ कोई फोन नहीं अटेंड किया, कोई बिजी रहता है,
1: बिजी रहता है फोन,
2: बिजी
1: क्योंकि फोन
2: रहता
1: कॉल
2: है,
1: बहुत आती है ना एक्चुअली,
2: बहुत आते हैं तो हम
1: तो
2: समझ जाते हैं,
1: हाँ
2: और वैसे हमारे को मालूम है एक आदमी 1 महीने में 1 बार ही करे।
1: हाँ बिल्कुल। ये हम इसलिए कहते हैं
2: बिल्कुल
1: ताकि एक ही एक व्यक्ति बराबर फोन करे और किसी का
2: बिल्कुल,
1: नंबर नहीं आए,
2: नंबर नहीं आवे।
1: इसलिए हम ये निवेदन करते हैं अपने कार्यक्रम में। चलिए तो खेती बाड़ी की बात करें, इसके साथ में आप कुछ पशुपालन भी रखते हैं क्या?
2: बिल्कुल, 5-6 पहले तो हमारे 2019-20 में तो 100 सवा से गाय भैंस थी, तबेला लगा रखा था,
1: अच्छा
2: वो कोरोना हो गया तो
1: हाँ
2: उस टाइम में वो थोड़ा डैमेज हो गया,
1: अच्छा
2: पशु मवेशी कुछ
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: खत्म हो गए,
1: हाँ।
2: और अभी
1: तो
2: तो 5-4 गाय भैंस रखते हैं।
1: एक बात और बताइए आपकी, भी किसानों को भी पढ़े लिखे होने की जरूरत है क्या? उससे कुछ फायदा होता है कि पढ़े लिखे होने से?
2: बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो पढ़े बगैर कुछ ही नहीं है सर, आजकल तो बगैर पढ़े तो कोई दवाई लावे तो भी देखे टाइम है, पहले सही है गलत है।
1: अच्छा आजकल जो पढ़ गए लिख गए ना जैसे बच्चे आपके पोते वगैरह, तो वो पढ़ने लिखने वाले फिर वो खेती बाड़ी और ये पौधे वौधे नहीं में रुचि कम रहती, नौकरी करना चाहते हैं, तो वो बताओ उसको, उनको आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को?
2: उनको ही समझाते हैं नौकरी के लिए ही है, और वैसे पौधों का ही उनको शौक भी है,
1: अच्छा
2: पौधों के में हमारे को बहुत सहयोग कर रहे हैं।
1: अच्छा तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं?
2: हमारे 2 बच्चे हैं और 4 पोते हैं, तो एक MBBS कर रहा है
1: अच्छा
2: और एक कॉलेज कर रहा है, दो बाल 9th 10th में चला है, पढ़ रहा
1: अच्छा
2: है।
1: तो मतलब आपने बच्चों को पढ़ा रहे हो मतलब?
2: हाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़े जीते पढ़ा रहे हैं।
1: तो आप तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपके परिवार के लोग आपकी देखभाल करते हैं आराम बढ़िया मतलब?
2: बिल्कुल खूब देखभाल करते हैं, वैसे हमारे किसी की जरूरत नहीं अभी तो,
1: अच्छा
2: हम
1: हाथ
2: तो
1: पीर चल रहे राम जी की कृपा से।
2: बस भगवान की दया है।
1: हाँ फिर भी
2: हाँ
1: मतलब जो है मान सम्मान
2: बिल्कुल,
1: पूरा घर
2: सब
1: में?
2: मान सम्मान अच्छा है,
1: हाँ
2: और 2 बच्चे 4 पोते हैं, खाना अलग अलग अलग बनाता है लेकिन हिसाब किताब एक ही है,
1: अच्छा
2: हमारे
1: चलिए
2: अलग वाला नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात है।
2: फायदा
1: तो ये संयुक्त परिवार जो अपन रखते हैं उससे कुछ फायदा होता है कि भाई एक
2: ही
1: साथ?
2: होता है, फायदे नुकसान क्या होता है, सीमित परिवार तो अच्छा ही है। हाँ
1: हाँ संयुक्त परिवार भी और सीमित परिवार
2: हाँ
1: भी दोनों ही,
2: सीमित संयुक्त दोनों ही अच्छा ही है,
1: हाँ साथ में इकट्ठे रहते हैं भाई वगैरह
2: नहीं तो
1: सब परिवार,
2: खर्चा भी
1: तो
2: कम होता है।
1: खर्चा भी कम होता है
2: खर्चा भी
1: ये।
2: कम होता है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने अभी बात बताई थी जी कि भाई पशु रखते थे और जैविक खेती आप करते हो, बारानी खेती करते हो, खाद वगैरह देसी खाद ही डालते हो।
2: मैं तो देसी डाली है, अभी तक कभी यूरिया नहीं डाला है या DAP नहीं डाला है।
1: अच्छा।
2: और हमारे 4-5 बीघा में 60-70 मन बाजरी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: अच्छी बारिश हो तो।
1: हाँ।
2: कुओं पे नहीं होती है, इतनी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: लेकिन बारिश होनी चाहिए।
1: हाँ।
2: और देसी खाद डालते हैं,
1: देसी
2: प्योर देसी घर का ही गाय
1: अच्छा।
2: भैंस का।
1: तो बहुत अच्छी बात है। ये जो यूरिया वगैरह ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं आजकल किसान लोग, इससे क्या नुकसान है?
2: नुकसान ही है आजकल, मान लो कि कितनी बीमारियां हुई है। अब आजकल नया नया, पहले हम तो कभी सुना ही नहीं कैंसर क्या होता था, और आजकल
1: बिल्कुल।
2: कई
1: तो ये
2: बीमारी
1: प्राकृतिक खेती की ओर इसीलिए लौटने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि भाई प्राकृतिक खेती करो और जैविक खेती करो।
2: जैविक खेती करो। किसान सहयोगी खूब कर रही है किसानों को, वे मान लो के
1: हाँ,
2: तारबंदी का दे रहा है, सब
1: कई योजना है किसानों के लिए, तो
2: खूब
1: सरकार की
2: योजना
1: चाहे वो
2: काम
1: राज्य
2: ले रही
1: सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, अब किसानों को चाहिए कि वो पढ़ा लिखा होगा किसान होगा तो वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
2: बिल्कुल, पढ़ा लिखा है, थोड़ा बाहर घूमता है वही,
1: हाँ
2: और बैठा है जंगल में बैठा, वो तो देखे क्या है,
1: बिल्कुल
2: भेड़ बकरी चरा रहे हैं।
1: हाँ। तो देखिए वो इसीलिए जो पढ़ाई लिखाई की बात आई थी कि भाई किसानों को भी पढ़ा लिखा होना इसलिए जरूरी है, तभी वो सारी बातों को समझ सकेंगे और जो मतलब सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ भी उठा
2: लाभ
1: सकेंगे।
2: उठा सके।
1: तो अब हमारे सुनने वाले श्रोताओं को, आप जो भी हमारे किसान भाई हैं और दूसरे लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? कोई जीवन की ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज आप उनको बताओ भाई ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हो?
2: आजकल देखो साहब, ऐसी बात है, सब समझदार है, कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सब ये तो देसी खातरों काम लेवे ना साहब, तो मेरी कोई मान लो उनसे बढ़कर कोई नहीं है।
1: हाँ, जैविक खेत मतलब खेती
2: जैविक
1: करें
2: खेती आ गई देसी खाद।
1: तो उससे क्या है कि जो बीमारियां कैंसर जो बहुत बढ़ रहा है वो कंट्रोल होगा।
2: बिल्कुल, आजकल गंगानगर में ज्यादा कैंसर ज्यादा है,
1: बिल्कुल
2: पंजाब है गंगानगर साइड में,
1: तो उसका
2: हमारे
1: कारण
2: रास्ता।
1: वो ये है
2: हाँ,
1: जो
2: ज्यादा
1: ये रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग।
2: अंधाधुंध प्रयोग।
1: तो भाई हमारे किसान भाई और कार्यक्रम सुनने वाले पर्यावरण प्रेमी जो भी हमारे श्रोता हैं, आज इस बातचीत को सुनकर उनको अच्छा लगेगा। हमारे पर्यावरण प्रेमी, जैविक खेती करने वाले किसान और नर्सरी का संचालन करने वाले हमारे जागरूक बुजुर्ग आज हमारे स्टूडियो में आए, हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रतन सिंह जी।
2: जी
1: राम
2: सर,
1: राम सर।
2: राम राम, राम राम।
0: इनसे मिले कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था खेती बाड़ी के साथ पेड़ पौधों की नर्सरी से किसानों की आमदनी में वृद्धि। उन्नत किसान श्री रतन सिंह से बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार गोयल, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गजलें में गुलाम अली की गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई गज़ल। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं गाने पुराने ज़माने के।

लीजिए, प्रोग्राम का पहला गीत सुनिए जिसे हमने लिया है फिल्म अंदाज से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो
1: जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना।
0: सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

Ezer'e hap mıskıray. Ezer'e hap mıskıray. Ezer'e hap mıskıray.

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

फिर क्या करोगे, खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: फिल्म संगीत के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने।

है, हम आकाशवाणी नागौर के चिल्म चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गाने नए तराने नए। इस प्रोग्राम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, दे दे प्यार दे फिल्म का गीत। इसे गाया है गेरी संधू और नेहा कक्कड़ ने।

आइए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म डिशुम से। इसे गाया है जोनिता गांधी और अमित मिश्रा ने।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह की आवाजों में, फिल्म का नाम ओमकारा।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए

अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youtexperedsnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने नए तराने नए। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, एजेंट विनोद फिल्म से। इसे गाया है नंदिनी सिंह और मुअज्जम ने।

लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, खट्टा मीठा फिल्म से इसे गाया है दलेर मेहंदी और कल्पना पटावरी ने।

फिल्म संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से गाने नए तराने नए। अभी प्रोग्राम खत्म होता है, हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: रंग तरंग
2: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पंकज उधास की आवाज में आपने ये गाना सुना और अब पेश है ये अगला गाना। आवाज है जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की नवीन त्यागी के बोल हैं संदीप गोस्वामी का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है कपिल कुमार ने, धुन बनाई है मानस मुखर्जी ने।

0: संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग प्रोग्राम में अब पेश है दिलराज कौर की आवाज में मोहसिन नकवी का कलाम।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह का गाया हुआ, साहिब का लिखा हुआ गाना, समीरा कोपिकर का संगीत है।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना। प्रोफेसर जे के सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाला और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादा मुरादपुरी ने।

रंग तरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बेन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें। सुनते हैं ये गाना।

0: ये थी आखिरी पेशकश, अब दीजिए रंग तरंग कार्यक्रम से इजाजत।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधीय नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और इसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों के महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इन दीवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ये था यादों की महफिल कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: विविध भारती के बाकी प्रोग्राम्स आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ चलाई जा रही थी। इसके अपग्रेड होने से अब यात्रियों को आसानी होगी। इस मौके पर श्री वैष्णव ने भगत की कोठी स्थित वंदे भारत स्लीपर कोच वर्कशॉप के दूसरे चरण की भी घोषणा की। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। जोधपुर स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि देशभर में रेल संपर्क सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। राजस्थान को 10,000 करोड़ से अधिक के बजट आवंटन से आने वाले समय में रेलवे में और भी बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा।
1: ओवरऑल पूरे देश भर में कनेक्टिविटी जम के बढ़ रही है। अपने राजस्थान के लिए 10,000 करोड़ से अधिक का बजट मोदी जी ने दिया है, उसके कारण बहुत सारा काम हो रहा है। जोधपुर स्टेशन भी आप देख ही रहे हो, कई नई नई रेलवे लाइनें बन रही है। अपना जैसे मारवाड़ जंक्शन से मावली 40 साल पुरानी डिमांड थी, आज उसका गेज कन्वर्जन चल रहा है। मेड़ता से पुष्कर का काम चालू हुआ, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हरिद्वार की जो डिमांड है वो भी मेरे ध्यान में है और उसके लिए भी मैं कोई ना कोई अलग व्यवस्था करूंगा और बहुत जल्दी वो व्यवस्था की।
0: श्री वैष्णव शाम को जालौर जाएंगे, जहां से वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। उनका पाली जाने का भी कार्यक्रम है। श्री वैष्णव का ये दौरा राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में अहम है। उनका कल जयपुर में रोजगार मेले में शिरकत करने का कार्यक्रम है, जहां वे युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रेल मंत्री जयपुर जंक्शन में किए जा रहे पुनर्विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। राजस्थान में रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन वोटों की गिनती कर नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए 31 जुलाई तक का समय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकरण में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों को व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि कई तरह की चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव लगातार बनाए रखा है। उन्होंने अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का चलन और हथियारों तथा ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम के लिए एकीकृत और व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के नए भवन की आधारशिला रखी। यह अस्पताल 63 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी नागौर है। 1:05 हुए हैं, लीजिए फिर से सुनिए वेद भारती। हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं, हे गर्मी तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया, देखते ही देखते भाई मई का पूरा महीना पूरा हो गया, वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं, तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे, गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे, ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे, क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती, गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो सावन कैसा होगा, लाख बुलाओ आ ना सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की इबारत में। याद किया है कविता को हमारी एक श्रोता ने, सूरज तपता धरती जलती गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं, प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है, शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों, और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए

जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं। क्या हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती है। एसी कूलर से ना दिल बहलता है, रात में ना नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारद, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है यहाँ वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर 1 किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी अगर तो जरूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, 2 घड़ी भी चैन नहीं आता है। ऐसे में गगरे सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी

विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन, गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला भारत भूषण। और हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। ताजा हो रहा है ये संदेश। गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ये आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं लेकिन इस मौसम का मजा

0: है कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखिए आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई जरूरी काम हो जाए, और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी, जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहां नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहां से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज 43 दिन में आज अच्छा इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं, जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले यह गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब। श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है। हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की 7 चीजों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है, हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें जरूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बच

बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आएं। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है। जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है। इसी बीच कुछ पंक्तियां याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूं, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो 20-10 के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान, यह है जून का महीना। हालांकि अभी जून आने में लगभग 1 सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ, जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी जरूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1 2 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छुरी कतर मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बाप रे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहाँ गाड़ी की जरूरत ना हो वहाँ पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीजें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना? गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूं चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है। बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं, और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है, वो कैसे छुपेगा हरियाली से।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। वो बड़ी शिकायत है इन्हें, असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयां आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयां नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे जमीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किनकी है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना, और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है, जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है, और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहाँ बारिश हुई, जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला नहीं लगता? और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं? एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टिकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द डाका डिवीजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फ्यूलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को

0: थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना सेक्रेटरी पीसी लियोन।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
0: बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फिलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
2: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 29वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाए अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश

0: द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली

0: हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि

0: सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं। जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ है, लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया। लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली। भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के

संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दे, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
2: जी जी नमस्ते।
1: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
2: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: और क्या करती हैं आप?
2: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
1: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
2: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं, तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
1: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
2: जी जी, बेटा बड़ा है
1: जी
2: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
2: जी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का
1: अच्छा
2: शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
2: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टूटने का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज। ये
1: जी क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
2: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो,
1: जी
2: खाने दाल छीलूं।
1: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम खडिया एक मिनट वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: ट्यूशन हूँ दीदी।
0: ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है ये। आप तो यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इससे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ
0: जी
1: दो लाइन आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी, आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है।
1: जी,
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से

0: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
1: जी,
0: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
1: जी।
0: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
1: जी।
0: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
1: बिल्कुल
0: केक बहुत अच्छा बनता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है जी। तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
0: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
1: जी,
0: चाहे कोई पतीला ले, उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
1: जी,
0: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
1: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
0: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
1: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
0: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
1: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
0: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए, हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा अब नहीं है लेकिन वो भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
1: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
0: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा अब इतना बज गया अब ये आएगा।
1: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना सलामे इश्क मेरी जान।
1: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में
1: बस
0: बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है,
0: जी
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है। देखिए, आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी?
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं? आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी ये बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था,
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं, अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने।
0: जी
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी, तो
0: जी
1: एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ,
0: जी
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात है।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के, और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, अब कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना
1: हाँ,
0: कल्पना
1: वही
0: जी?
1: साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ,
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने MA सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी।
1: हाँ, मतलब
0: और
1: बहुत अच्छे दिन निकले, मेरा बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला,
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, सब कुछ। सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे
0: क्या
1: हमेशा।
0: बात है, गाने की महफिल लग
1: हाँ
0: जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं,
0: जी
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
0: क्या
1: मेरा
0: बात,
1: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ, तो
0: क्या बात है।
1: सबको का। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल मैं 63 ईयर्स की हूँ अभी,
0: जी जी
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
0: जी
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
0: क्या बात
1: मतलब
0: है।
1: फ्री हैं एकदम। तो
0: जी
1: मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सब के लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा
1: हाँ,
0: अच्छा
1: ये
0: लगा।
1: तो मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे,
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना सुनाएंगे?
0: ठीक है तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध
1: जी
0: भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश, छाया
0: जी जी जी
1: गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं, तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात
1: जी
0: करके। और अच्छा, ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है
1: बिल्कुल, खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं, या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से
1: नहीं,
0: खेल
1: मैं
0: पसंद के होते थे?
1: हाँ, मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा, हेल्दी
0: जी
1: रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि
0: अच्छा
1: हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता
0: क्या बात है, अब हमारे
1: है।
0: विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह।
1: जी
0: और
1: जी
0: आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा, किनारा
0: क्या बात है
1: फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि
1: जी
0: आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा लस्सी बनाना है तो
0: जी
1: आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के, जो आप जा डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम, मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए।
0: जी
1: और मेरी सास का नाम सुमन है,
0: जी
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है, और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है,
0: जी जी
1: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये
0: जी
1: है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1, 2, 4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी। मेरा नाम आशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है, यहाँ
0: जी
1: पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान हैं, जो वहाँ की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: जी सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है
0: हिना फिल्म का, क्या
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रहूंगी।
0: बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, आप अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान, सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं,
0: जी
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है। आज
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी, लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादिया मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है
0: जी
1: हेलो सहेली में आकर।
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी
1: और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे,
0: जी
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए
0: जी
1: मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात
1: हाँ
0: है। तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन
1: हाँ
0: से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी,
0: जी
1: छाया गीत,
0: जी
1: ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात
1: हाँ,
0: है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक
0: जी
1: कविता
0: जी
1: मराठी में लिखती हूँ,
0: जी
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली यानी स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी ने ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजुल सी सरलता।
0: क्या बात।
1: धन्यवाद।
0: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सखी रे सुन बोले पपीहा उस पार।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466214।

0: मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002462। एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288। एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
2: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तू।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्युमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहां क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए

0: पूछा, कौन हो तुम?
1: मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं।
0: लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई?
1: एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है।
0: तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं,
1: लड़की ने ऊंची आवाज में कहा।
0: मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूं, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम

क्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेलकूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

0: संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितनी

अब मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरी बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था। और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमाने खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है। मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है? सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें। कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आपको बताते हैं कि विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप हमारे इस केंद्र से पुनः सुन पाएंगे रात्रि 9:15 से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम व्यूवाणी।

वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिम्पल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युवाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं बल्कि धरती का दिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हर साल 22 मई को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या है ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी धरती इतनी खूबसूरत क्यों है? क्यों हर मोड पर हमें कुछ नया देखने को मिलता है? कहीं जंगलों की हरियाली, कहीं रंग बिरंगे पक्षी, तो कहीं फूलों की खुशबू, तो कहीं समुद्रों की नीली गहराइयाँ। दोस्तों, इन सभी का नाम ही जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी। मतलब धरती पर मौजूद जो भी पौधे हैं, जानवर हैं और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी, और इनके बीच के जो आपसी संबंध है, हम सब मिलकर धरती नाम की इस फैमिली का हिस्सा हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस जैव विविधता के दिवस को मनाने के लिए आखिर आज ही का दिन क्यों चुना गया? तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि 1992 में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने रियो डी जेनेरियो में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, द अर्थ समिट, और उसी दिन बायोडाइवर्सिटी पर एक बड़ा कन्वेंशन अपनाया गया और बाद में 22 मई को यानी आज ही के दिन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे घोषित किया गया। मतलब दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम

सिर्फ इस धरती पर रहते ही नहीं हैं बल्कि इसके केयर टेकर्स भी हैं। हर साल इस दिन की एक खास थीम होती है जो हमें बताती है कि इस साल हमारा फोकस क्या होना चाहिए। कभी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, कभी अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, कभी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। हर थीम एक मैसेज होती है दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी कोई लग्जरी नहीं है बल्कि ये हमारे लिए नेसेसिटी भी है। दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हर चीज़ इसी पर डिपेंड करती है। हमारी सांस की हवा, हमारा खाना, हमारी दवाइयाँ, हमारी खेती, मौसम, नदियाँ और हमारे जंगल, सब कुछ, ये सभी बायोडाइवर्सिटी से ही चलते हैं। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए कि अगर धरती एक गाना होती तो बायोडाइवर्सिटी उसके सारे सुर होते, और एक सुर भी कम हो जाए तो धुन बिगड़ जाती है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना? लेकिन दोस्तों, सच थोड़ा, आपको पता है, दर्द हमें देता है। आज बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। क्यों? इसका रीज़न भी हम खुद ही हैं, क्योंकि आज मनुष्य ही है जो जंगलों की कटाई कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और तो और हम जानवरों को भी नहीं बख्श रहे, शिकार कर रहे हैं, प्लास्टिक्स यूज़ बढ़ गया है, और बढ़ती आबादी का दबाव तो है ही। दोस्तों, सोचिए, हर मिनट एक प्रजाति गायब हो रही है, जैसे कोई किसी परिवार का सदस्य दूर चला जाए और कभी वापस ना आए, वैसा ही हमारी धरती माँ भी अभी महसूस करती है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि किसने नुकसान किया, सवाल ये है कि हम आखिर इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम छोटे छोटे कदम उठाकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन कैसे? दोस्तों, सबसे पहले आप घर में पेड़ लगाइए, या फिर बाहर जहाँ भी आपको ज़मीन दिखे वहाँ पर आप एक शपथ ले लीजिए कि हम इस दिन या महीने में या फिर साल में किसी स्पेशल डे हम पेड़ ज़रूर लगाएंगे। और प्लास्टिक यूज़ कम कीजिए, पानी को बचाइए और प्रकृति की सफाई में भी हिस्सा लीजिए। पेपर वेस्ट कम कीजिए, लोकल प्रोडक्ट्स को आप सपोर्ट कीजिए, और सबसे ज़रूरी, दूसरों को भी जागरूक कीजिए। दोस्तों, सोचिए कि आज आपने प्रकृति के लिए क्या किया है। दोस्तों, धरती हमारी माँ है, और माँ से प्यार जताने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि नहीं? और दोस्तों, आज की ये जो तारीख है ना, 22 मई, ये सिर्फ एक डेट नहीं है बल्कि एक हम सभी के लिए रिमाइंडर है, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वादा है कि हम अपनी धरती को खूबसूरत बनाए रखेंगे। और याद रखिए, नेचर डजंट नीड अस एज मच एज वी नीड नेचर। दोस्तों, इस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे पर हम सब मिलकर एक शपथ लें कि हम इस प्रकृति को बचाएंगे और हमारे भविष्य को बचाएंगे। तो दोस्तों, युवाणी का सफ़र है, हमारी बातें तो यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन गीत।

0: radio@mumbai.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली चर्चा की। फ्रेंड्स, दुनिया में शांति की जितनी ज़रूरत आज है शायद इससे पहले कभी नहीं थी, लेकिन सवाल ये है कि इस शांति को बनाए कौन रखेगा, और जवाब है हम, यानी हम सभी युवा, क्योंकि जहाँ ऊर्जा होती है वही बदलाव की ताकत भी होती है। यूथ पावर, वाई इट मैटर्स। दोस्तों, युवा सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं होता, युवा एक सोच है जो कहती है कि हाँ, हम बदल सकते हैं और दुनिया भी बदल सकती है। आज की पीढ़ी तेज भी है, टैक्स स्मार्ट भी है, और सबसे बड़ी बात, ये दिल से बेहद साफ भी है, और यही दिल शांति और सद्भाव का सबसे बड़ा आधार होता है। दोस्तों, शांति सिर्फ युद्ध नहीं होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब आपस में सम्मान, समझ और प्यार बचाए रखना है, और सद्भाव मतलब अलग अलग विचारों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच पुल बनाना, दूरी नहीं। दोस्तों, आखिर ये शांति और सद्भाव में युवाओं की आखिर क्या भूमिकाएं हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो युवा पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि ये काफ़ी कुछ बदल सकता है। युवाओं के पास सबसे बड़ी ताकत है बात कहने और सही तरह से कहने की एबिलिटी। एक पॉजिटिव वर्ड, एक समझदारी भरी बात किसी भी गलत फहमी को ख़त्म कर सकती है कि नहीं? और दोस्तों, सोशल मीडिया का आप जिम्मेदार इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया जहां आग लगा सकता है, वहीं ये बारिश भी कर सकता है। एक शेयर, एक पोस्ट और एक कमेंट सद्भाव बढ़ा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और आज की युवा पीढ़ी गुड वाइब्स फैलाने में माहिर है, और फेक न्यूज़ रोकना हम सब की जिम्मेदारी है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, आप डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कीजिए। युवा दल से बड़े खुले होते हैं, और वो जानते हैं कि भारत की खूबसूरती इसकी विविधता में ही है। जब हम फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हैं, तब हम शांति को मजबूत करते हैं। दोस्तों, डायलॉग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात अगर हम करें, लड़ाई से कभी भी हल नहीं निकलता, लेकिन बातचीत से हमेशा रास्ता मिलता है। युवा अगर किसी विवाद में अगर मीडिएटर बन जाए, तो हालात पल भर में बदल सकते हैं, क्योंकि युवा सुनते भी हैं और समझते भी हैं, है कि नहीं? और दोस्तों, किसी भी शहर की असली जान उसके युवा ही होते हैं। जब युवा सफाई अभियान, शिक्षा अभियान या फिर सामाजिक सेवा में लगते हैं, तो लोगों के दिलों में एकता की भावना बढ़ती है, और जहां एकता है वहीं शांति अपने आप रहती है। दोस्तों, बाहरी शांति तभी आती है जब आप भीतर से भी शांत हो, इसीलिए अपनी मेंटल पीस को भी प्रमोट करना आपका काम है। यंग जनरेशन मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, म्यूजिक थेरेपी जैसे तरीकों से मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बना सकती है। आपने सुना होगा ना, पीसफुल माइंड क्रिएट्स अ पीसफुल सोसाइटी। तो सभी युवाओं को यही मैसेज है कि आप एक मोटिवेशनल ब्लॉग क्रिएट कीजिए। याद रखिए दोस्तों, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हम समाज के लिए भी हैं, और हमारे एक फैसले से, हमारी एक सोच से, हमारे एक एक्शन से पूरा माहौल बदल सकता है। यूथ इज़ नॉट द फ्यूचर ओनली, यूथ इज़ द प्रेजेंट, और आज का प्रेजेंट ही कल का पीसफुल वर्ल्ड बनाएगा, है कि नहीं? तो दोस्तों, आज का टेक अवे बस इतना सा कि शांति और सद्भाव कहीं बाहर नहीं मिलते, ये उसी दिल में बसते हैं जो समझना जानता हो, और ऐसा दिल युवाओं के पास सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए स्टे काम, स्टे काइंड और स्प्रेड पीसफुल अराउंड। दोस्तों, बातें तो यूँ ही जारी रहेगी, फिलहाल आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में, और सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, और अब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट की। दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है सिनेमा इस हफ्ते। तो सिनेमा इस हफ्ते में आज मैं बात करने वाली हूँ नेशनल अवार्ड्स विजेता फिल्मों की और उनसे जुड़े कलाकारों की। दोस्तों, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो अपडेट्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया गया था, जिसमें कई फिल्में और कलाकारों ने बाजी मारी थी। सबसे बड़ी खास बात यह कि बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड 12th फेल को मिला था। ये फिल्म अपने प्रेरणादायक विषय और वास्तविक संघर्ष की कहानी के लिए जानी जाती है दोस्तों। और अगर बात करें बेस्ट एक्टर की, तो शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। ये उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ा सम्मान है। और एक्टर विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर पुरस्कार 12th फेल मूवी के लिए मिला था। इस वर्ष दोनों को ही इन दोनों एक्टर्स को ही संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। ये बेहद खास बात है। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता था, और ये उनके करियर का पहला नेशनल पुरस्कार भी है। और दोस्तों, कौन से फिल्में और टैलेंट्स चमके थे, हम बात करेंगे बेस्ट डायरेक्टर की। द केरला स्टोरी के निर्देशक को बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान मिला, और ये एक चर्चित फिल्म थी जिसने आलोचकों का भी दिल जीता था। साथ ही बेस्ट पॉपुलर फिल्म की अगर हम बात करें, तो वो थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसे जनता और क्रिटिक्स दोनों ने पसंद किया, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड इसने हासिल किया। दोस्तों, भाषाई श्रेणियों में अगर हम सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात करें, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और

कई भाषाओं की फिल्मों ने भी नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे, जैसे कथल एजैकफुट मिस्ट्री हिंदी में थी, पार्किंग तमिल में, और भगवन केसरी तेलुगु में थी, और भी कई भाषाई विजेता फिल्म रही थी। साथ ही लघु और बच्चों की फिल्में भी थी। नाल टू मराठी, इसको बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। और ख़ास बात यह है कि कई जो चाइल्ड एक्टर और एक्ट्रेस ने भी नेशनल अवार्ड जीते थे, जो अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए फिल्म लवर सभी को प्रभावित कर चुके हैं। दोस्तों, इस साल शाहरुख खान ने पहली बार अपने करियर में नेशनल अवार्ड जीता था, वो भी जवान मूवी के लिए। और ट्वेल्थ फेल जैसे मोटिवेशनल फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलना इस बात का सबूत है कि इंडियन सिनेमा अब स्टोरी ड्राइवन और रियल लाइफ थीम्स को भी सम्मान दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बड़े स्टार्स ही अवार्ड जीतते हैं, लेकिन इस साल एक छोटा कलाकार त्रिशा तोशर जैसे बच्चे कलाकारों को भी सम्मान मिला है, और ये फिल्म जगत का एक नया उभरता चेहरा है। तो दोस्तों, बातें यूं ही जारी रहेगी, फिलहाल आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा नगमा।

तो दोस्तों, अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई यहाँ इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। तो मैं चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है। पा ही लेंगे आखिर मंजिल, राहों की मोहताज नहीं, साथ हो उम्मीदों का, कल होगा वही जो आज नहीं। तो दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ख्याल रखिए अपना। और हाँ, जैव विविधता के बारे में ज़रूर सोचिए। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्यूवाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा अभी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

जिंदगी बड़ी नहीं, बड़ी बातें छोटी हैं, हंसकर जी लो पल दो पल, यही मुलाकातें छोटी है। कल की फिक्र में आज ना गवाओ, क्योंकि जिंदगी की ये सौगातें छोटी हैं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब सखियों, में रईसा महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूँ। प्यारे सखियों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, यानी वसुदेव कुटुंबकम। दुनिया के सभी देशों को एक सूत्र में बांधने और वैश्विक समस्याओं पर सबका ध्यान खींचने के लिए हर साल 22 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाती है। 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी। सखियों, जैव विविधता का मतलब है धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव और उनका आपसी तालमेल। ये विविधता ही हमारी जिंदगी की असली दौलत है सखियों। सखियों, अब सवाल उठता है कि आखिर जैव विविधता दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला, लोगों को बताना कि बाघ, गिद्ध, गोरैया क्यों जरूरी है। सिर्फ इंसान से दुनिया नहीं चलती। दूसरा, संरक्षण, जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं उन्हें बचाने के लिए सरकार और जनता को एक करना। सखियों, इस संबंध में हम आपसे और भी बातें करेंगे, अभी लेंगे ब्रेक।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

सखियों, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर जैव विविधता दिवस मनाना क्यों जरूरी है। इसके पीछे तीसरा कारण है सतत विकास। प्रकृति से उतना ही लो जितना वापस आप दे सको। प्रकृति हमारी माँ है, ये सबको याद दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सखियों, जरा सोचिए, अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तो 70% फसल नहीं होगी, क्योंकि परागण कौन करेगा? अगर पेड़ कट जाए तो बारिश कौन लाएगा? अगर गिद्ध खत्म हो जाए तो मरे हुए जानवर सड़ जाएंगे, बीमारियां फैलेंगी। तो सखियों, भोजन चावल, गेहूं, दाल, फल सब जैव विविधता की देन है। 50% दवाइयाँ पेड़ पौधों से बनती हैं। तुलसी, नीम, अश्वगंधा, याद है ना सखियों? जंगल ऑक्सीजन देते हैं, नदियों को साफ रखते हैं। मछुआरे, किसान, जड़ी बूटी बेचने वाले, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी प्रकृति से चल रही है। इस प्रकार सखियो, भारत तो जैव विविधता का खजाना है। दुनिया की 8% प्रजातियां सिर्फ हमारे यहाँ मिलती हैं। सुंदरवन का बाघ, पश्चिमी घाट के मेंढक और हमारे नागौर के पास खिंचन की कुर्जा, ये सब अनमोल हैं। लेकिन जंगलों को काट कर, प्रदूषण फैला कर, शिकार करके हम खुद ही जैव विविधता के संदर्भ में खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो जरा सोचो सखियों, जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी, आखिरी मछली पकड़ ली जाएगी, तब इंसान समझेगा कि पैसे खाए नहीं जाते। इस प्रकार सखियों, जैव विविधता दिवस हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, हिस्सा हैं। बाग बचेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो खेत लहलहाएंगे और तभी हमारी थाली में रोटी आएगी। तो इस प्रकार इस 22 मई को सखियों शपथ लो कि प्रकृति का कर्ज हमें चुकाना है। सखियों, एक पौधा, एक परिंदा, एक छोटा कदम बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि धरती बचेगी तो जिंदगी बचेगी। इसलिए सखियों, जैव विविधता पर जागरूक होने की हमें बहुत बहुत जरूरत है। अब बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे आदमी खिलौना है फिल्म का ये गीत। प्यारे सखियों, भारत जैसे विशाल देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। घर घर जाकर जनगणना अधिकारी या कर्मचारी हमसे हमारे परिवार, शिक्षा, काम, मकान के बारे में जानकारी लेते हैं। ये आंकड़े सिर्फ कागज पर नंबर नहीं, बल्कि हमारे गांव, हमारे शहर और देश की तकदीर बदलते हैं। इसलिए जनगणना वाले भैया या दीदी को सही सही जानकारी देना हर नागरिक का कर्तव्य है। आखिर जनगणना क्यों जरूरी है, तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpress@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
0: सखियों, ब्रेक से पहले हमने चर्चा की थी आखिर जनगणना क्यों जरूरी है। सखियों, जनगणना के आंकड़े, इन आंकड़ों से ही सरकारी योजनाएं बनती हैं। जैसे अगर सरकार को पता चलेगा कि नागौर में कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो वहीं नया स्कूल खुलेगा। कितने घरों में शौचालय नहीं है, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन का पैसा आएगा। बजट का बंटवारा करने के लिए जैसे MP MLA को कितना पैसा मिले, राशन की दुकानें कहाँ खुले, अस्पताल कितने बेड का बने, ये सब जनगणना के आंकड़ों से ही तय होता है। कितनी सीट SC या ST या OBC के लिए नौकरी के लिए होंगी, ये सब जनसंख्या के हिसाब से ही तय होता है। इसलिए जनगणना करने आए सभी कर्मचारी को सही सही जानकारी जरूर दें। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा ही नुकसान है। कैसे? गांव का विकास रुकेगा। अगर आपने बताया कि घर में टॉयलेट है जबकि है ही नहीं, तो सरकार यहां पैसा नहीं भेजेगी, अगली बार भी खुले में ही जाना पड़ेगा। अगर बच्ची की उम्र गलत बताई या बताया कि वो स्कूल जाती है जबकि वो नहीं जाती, तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लाभ यहां नहीं देगी। नागौर में कितने बेरोजगार हैं, ये गलत बताया तो नई फैक्ट्री या स्किल सेंटर यहाँ नहीं खुलेगा। सखियों, कई लोग डरते हैं कि आंकड़े इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे या पुलिस आ जाएगी, पर कानून कहता है सखियों कि जनगणना का डेटा 100% गोपनीय होता है। इसे कोर्ट में भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल सिर्फ योजना बनाने में होता है। इसलिए सखियों, डरे नहीं, सही जानकारी दें। जनगणना अधिकारी सरकार का दूत है, दुश्मन नहीं। वो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, परिवार के हर सदस्य जो बाहर पड़ रहा है, जो कमाने गया है, नवजात बच्चा, सबका नाम लिखवाएं। आधार, बिजली बिल, राशन कार्ड ये अपने पास रखो, वो तो इससे आपको उम्र बताने में आपको आसानी रहेगी। अक्सर घर की बहू बेटी का नाम छूट जाता है, याद रखो सखियों, महिला का नाम जुड़ेगा तभी महिला योजना का लाभ मिलेगा। इस प्रकार सखियों, देश बड़ा तभी बनता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। वोट देना जितना जरूरी है, जनगणना में सही आंकड़े देना उतना ही जरूरी है। इसलिए याद रखें, सही गणना देश की रचना। जब अगली बार जनगणना कर्मचारी आए, तो गर्व से सही सही हर सवाल का जवाब दें, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आपके और आपके नागौर का भविष्य है। इसलिए सखियों, जो भी कर्मचारी आए, उसे जनगणना से संबंधित जो भी जानकारी हासिल करनी है, उसे सही सही दें। अब फिर से रुक करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं ये गीत।

तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म का अनुराधा और कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत प्यारी सखियों। क्या आपको पता है, गर्मी की 1 घंटे की धूप आपकी स्किन को 6 महीने बूढ़ा बना देती है। डरो मत, आज मैं आपको बताती हूँ गर्मियों में स्किन को कैसे बचाएं, वो भी घर के सामान से। तो चलिए सखियों, आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम घर बैठे अपनी त्वचा को धूप से बचा सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपके चेहरे को पूरे समर अच्छा बनाए रखेंगे। सबसे पहले आप हमेशा दिन में 2 बार चेहरा ज़रूर धोएं। सुबह रात को माइल्ड फेस वॉश से चेहरा ज़रूर धोएं, क्योंकि गर्मी में पसीना और ऑयल से चेहरे के पोर्स बंद हो जाते हैं। SPF 30 या 50 वाली सनस्क्रीन घर से निकलने के 20 मिनट पहले लगाओ। चेहरा धोने के बाद रुई से गुलाब जल चेहरे पर ज़रूर लगाएं, इससे पोर्स टाइट होते हैं। पसीने से चेहरा चिपचिपा नहीं लगेगा। इससे आपको एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, इसका इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट, हफ्ते में 2 बार स्क्रब और पैक का इस्तेमाल करें। स्क्रब के लिए आप 1 चम्मच बेसन, 2 चुटकी हल्दी, दही मिलाकर 5 मिनट आप इसे अपने चेहरे पर रगड़ें, सारी डेड स्किन निकल जाएगी। पैक के लिए आप खीरे का रस और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर 15 मिनट अपने चेहरे पर ज़रूर लगाएं, इससे टैनिंग भी हटेगी और ठंडक भी मिलेगी। इन सब के अलावा सखियो, दिन में रोजाना 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए, इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और स्किन भी ग्लो करती है। तरबूज, खीरा, ककड़ी, दही, छाछ, नारियल पानी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला खाना, चाय, कॉफ़ी से परहेज करें। इस प्रकार से इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा को हेल्दी रख सकती हैं। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ सखियों, समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि ज़िंदगी किताब है, हर पन्ना नया है, कभी धूप का मौसम कभी छाँव का साया है, जो सीख ले हर हर मोड़ से कुछ, वही असली ज़िंदगी का जादूगर कहलाया है। तो अब दीजिए इजाज़त अपने सखी रईसा को, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के

0: सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए दो दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सुनी है यार और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी आप ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम तन संगीत। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म काला पत्थर के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी।

दोस्तों फिल्म संगीत का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म काली टोपी लाल रुमाल। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी।

दोस्तों, ये फिल्मी गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के 6 मेजर से। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म कलयुग की रामायण से। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

चलिए दोस्तों, कर्म का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है कन्हैया। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटिक के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोपाल धानुका और करीम खां खेजरला के गाए कुछ लोकगीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटिक के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गोपाल धनुक और करीम खां खेजड़ला के गाए कुछ लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी सुन रहे हैं आप ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए। इस समय शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:45 से आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। जयपुर में होने वाले रोजगार मेले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। वहीं अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के तहत बीएसएफ की सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को शामिल कर अगले एक वर्ष के भीतर अभेद्य सीमा सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियनों और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब ये सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। नगरीय विकास मंत्री झाबरमर खल्ला ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एक वक्तव्य में श्री जूली ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3 सीट सहित 10 राज्यों की 24 सीटों के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन 24 सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त हो रहा है। इनमें राजस्थान से चुने गए राज्यसभा के 3 सदस्य नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन 8 जून तक भरे जाएंगे। वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 तारीख को होगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की मंत्री बैठक चल रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। अब से कुछ देर बाद राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देंगे। करीब 3 महीने बाद हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक को कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल की आधारभूत संरचना का काम तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्टेशनों को नया और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। श्री वैष्णव आज जालौर में भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे राज्य में कई रेल परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है।
2: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से, और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी, दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीमड़ी की डबलिंग, आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
0: श्री वैष्णव ने भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। श्री वैष्णव अब से कुछ देर बाद पाली पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इससे पहले रेल मंत्री ने आज सुबह जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ संचालित हो रही थी। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने समृद्ध जैव विविधता को सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति मनुष्य के मन में कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है।
3: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम

0: में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा, तो ये हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
1: जैव विविधता दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा की ओर से विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, साथ ही उन्हें जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पौधे रोपे गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। पाली में भी पर्यावरण संरक्षण शपथ, पौधरोपण और जल संरक्षण सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। देश भर में 1 अप्रैल से लागू हुए आयकर कानून को लेकर शुरू किए गए देशव्यापी जन जागरूकता अभियान प्रारंभ के तहत आज जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद कर नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही विभाग की ओर से लाए गए विभिन्न टूल्स के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि नया आयकर अधिनियम छोटा और सुगम है, जिसमें पुरानी सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।
2: ये नया अधिनियम जो है ये पुरानी की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं, जिसमें कि चैट बॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को, और चैट बॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
1: राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में 14 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का निशुल्क टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीग में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही स्कूलों में जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। डीग जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये वैक्सीन बालिकाओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में सहायक है।
3: जो HPV वैक्सीन है, बच्चियों को बाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है। जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं, उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जो लोग, वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे। तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
1: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और साहित्य तथा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रेरणादायक कामों के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले की चिट्ठी में हम आपको बताएंगे विकास कार्यों, HPV टीकाकरण, नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में। साथ ही होगी बात ग्राम कृषि महोत्सव और हीटवेव की दौर की, किंतु चिट्ठी की शुरुआत ब्रज की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा के साथ। जिले में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। अधिक मास की शुरुआत के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर इस पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन और विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तैयारियां की गई हैं।
4: डीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बताया कि परिक्रमार्थियों के लिए प्रमुख पड़ाव स्थलों पर सहायता के

0: केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कई सरकारी विद्यालयों को अस्थायी आश्रय स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिले को करीब 24 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं की सौगात मिली है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। जल संसाधन मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पिछले दिनों परमदरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ रहे। किसानों की सुविधा के लिए ककड़ा चैनल के जीर्णोद्धार और गुड़गांव कैनाल सिंचाई परियोजना के तहत टेल डिस्ट्रीब्यूटरी और इसकी माइनर्स के पुनरुद्धार कार्यों को पूरा कर इसे जनता को समर्पित किया गया। इसके अलावा डीग डिस्ट्रीब्यूटरी की दीदावली, परमदरा और डीग सब माइनर के जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास किया गया। डीग जिले को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से जोड़ दिया गया है। इससे इन नदियों का पानी आने वाले समय में मिलेगा। गृह राज्य मंत्री श्री बेढम ने बताया कि पेयजल संकट के समाधान के लिए हर घर नल योजना के तहत अगले 2-3 महीनों में लगभग 40% काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे HPV टीकाकरण अभियान में डीग जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जिले को 13,855 बालिकाओं के वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से 10,000 से अधिक बालिकाओं को HPV टीका लगाया जा चुका है। 72% से अधिक टीकाकरण कवरेज के साथ डीग प्रदेश में पहले स्थान पर है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान के तहत जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया सहित अन्य जांचें भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल ने बताया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के साथ ही जिले में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने के बारे में भी सचेत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जिले में साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति रोकथाम के लिए विशेष कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत हर महीने के पहले शनिवार को विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। वहीं दूसरे शनिवार को नशे की लत से बचाव के लिए नशे से होने वाले गंभीर नुकसानों के प्रति सचेत किया जाएगा। तीसरे शनिवार को साइबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में सतर्क किया जाएगा। पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से इन दिनों महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल, कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रही हैं। पिछले दिनों कुम्हेर के कृषि विज्ञान केंद्र में ग्राम कृषि महोत्सव रखा गया। इसमें जिले भर से महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को नई कृषि तकनीक, मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों प्रचंड गर्मी और हीट वेव का असर है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के मरीजों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रखा जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए 51,000 नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौ पहला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत अर करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलों जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेज विकास भयो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल देश माए 47 ठोड़ा राख्या जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत 51,000 नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपेला। श्री मोदी रो ई मौके मौजूद लोगों ने संबोधित करण रो ये कार्यक्रम है। नुआ चुनीचिया कर्मचारी रेल गृह और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग समेत केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा मंत्रालय और विभागों माए कामकाज संभालेला। जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल फैला। अजमेर माए फेवन वाला कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल फैला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत और करड़ीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली माए आज सीमा सुरक्षा बल BSF रा अलंकरण समारोह माए आ जानकारी दीनी। वे कहो कि ई परियोजना माए ड्रोन रडार कैमरा और दूजा तकनीकी साधन शामिल फैला। गृहमंत्री कहो कि स्मार्ट बॉर्डर री सोच रातेत BSF री सुरक्षा प्रणाली माए प्रौद्योगिकी ने शामिल कर आवता एक साल माए नी भेदियो जा सकबा वालों सीमा सुरक्षा ढांचो विकसित करण सारू काम चाल रियो है।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
1: गृह मंत्री कहो कि BSF साल 1965 में 25 बटालियन और सीमित साधना सागे काम शुरू कीनो हो। शाह कहो कि BSF अब 2,70,000 कर्मचारियों री मोटी तादाद सागे सरहद री हिफाजत करन वालो दुनिया रो सब मोटो बल बन गयो है। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना है। अदालत ए चुनाव इस साल दिसंबर महीना ताई टाल देवन रे सरकार री अर्जी खारिज कर दीनी। हाईकोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा री सदारत वाली खंडपीठ चुनाव प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 20 जून ताई रपट पेश करन रा हुकम दीना। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा अदालत रा फैसला माथे कहो कि सरकार चुनाव करावन सारू तैयार है। दूजिकानी विधानसभा में विपक्षा नेता टीकाराम जूली हाईकोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो। वे राज्य सरकार माथे सोच समझ हर चुनाव टाळबारी कोशिश रो आरोप मांडियो। चुनाव आयोग राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा कार्यक्रम रो ऐलान कर दीनो है। कार्यक्रम रे मुजब चुनाव री अधिसूचना 1 जून 2026 न जारी करी जावेला। पर्चा 8 जून ताई भरिया जा सकेला और 11 जून ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। 18 जून न वोट पड़ेला और वाई दिन सिंजा रिपोर्ट वोटा ने गिनती करी जावेला। वो चुनाव प्रदेश री 3 सीटा समेत 10 राज्यां री 24 सीटा सारू करायो जावेला। आ 24 सदस्यां रो कार्यकाल जून जुलाई 2026 माय पूरो वे जावेला। राजस्थान नु चुनी जिया 3 सदस्यां नीरज डांगी राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह रो कार्यकाल 21 जून 2026 ने पूरो वे रियो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री सदारत माए आज राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी ची। अब थोड़ी देर पछे राज्य मंत्रिमंडल रा सदस्य मीटिंग माए करी जिया फैसला री जानकारी देवेला। करीब 3 महीना पाछे भी मंत्रिमंडल री आ मीटिंग खास मानी जा रही है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो है कि लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलाऊ जुड़ियो बुनियादी ढांचो तेजी विकसित करी चियो है। श्री वैष्णव आज जालौर माए भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा री शुरुआत रे मौके राखी जिया जलसा माए बोल रहा है। वह कहो कि पहली राजस्थान माए रेलां रा विकास सारू हर साल

0: 500-600 करोड़ रुपया मिलता है, जबकि अब हर साल 10,000 करोड़ रुपया खर्च कराया जा रहा है।
1: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी, दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनड़ी की डबलिंग आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
0: श्री वैष्णव, भुज बरेली एक्सप्रेस गाड़ी ने हरी झंडी बता रवाना कीनी। आ गाड़ी भीलड़ी, जालौर, लूणी और जयपुर वेती दिल्ली पुगेला। इनु जालौर री जनता ने पहली दफा दिल्ली ताई सीधा संपर्क रो सुबितो मिल सकेला। श्री वैष्णव रो अबू थोड़ी देर पछे पाली माए रेलवे स्टेशन माथे कराया जा रहा विकास रा कामा रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनु पहली रेल मंत्री आज समारे जोधपुर स्टेशन नु 20 डिब्बा वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली कैंट स्टेशन सारू रवाना कीनी। पहली ई गाड़ी माए 8 डिब्बा हा। रेल मंत्री जैसलमेर स्टेशन माथे नुआ बनाई जिया कोच केयर कॉम्प्लेक्स रोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत उद्घाटन कीनो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जनताओं सगला प्राणियां सारू भेड़ो भविष्य बनावण माए मदद करण री अरज कीनी है। वे आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके मध्य प्रदेश रा भोपाल माए राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। यादव कहो कि कुदरत रा प्रति इंसान रा मन माए कृतज्ञता रो भाव वे उणो चाहिए।
2: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो यह हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
0: जैव विविधता दिवस रे मौके प्रदेश में आई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा री ओर एक कॉलेज में विद्यार्थियां सारू सवाल जवाब री होड़ राखी जी और जैव विविधता ने बचावन रा महत्व रे बारा माए जानकारी दी री जी। हनुमानगढ़ जिला रा टिब्बी री सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम राखी जियो। ये मौके पौधा रोपी जिया और परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। पाली माए पर्यावरण ने बचावन री सौगन लेवन, पौधारोपण और पानी बचावन जुड़िया कई कार्यक्रम राखी जिया। 1 अप्रैल 2026 हूँ लागू करी जिया नुआ आयकर कानून रे बारा माए जाग जगावन सारू चलाई जिया अभियान। प्रारंभ रातेत आज जयपुर माए खास कार्यक्रम राखी जियो। कार्यक्रम माए इनकम टैक्स महकमा रा आला अहलकार न्यारा न्यारा हित धारका सागे बातचीत कर नुआ कानून रे बारा माए विगतवार जानकारी दीनी। कार्यक्रम माए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील और उद्योग जगत रा नुमाइंदा शिरकत कीनी और सुझाव दीना। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था राज्य रा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार बतायो कि 1 अप्रैल नु लागू करी जियो नुओ इनकम टैक्स कानून नानो और आसान है।
3: ये नया अधिनियम जो है ये पुराने की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं जिसमें कि चैट बॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को, और चैट बॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
0: टाबरिया ने बच्चा दानी रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू HPV टीका लगावन रा अभियान रा तेत लीग माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री टीमा गांवा माए जार इंबाबत जाग जगा रही है। जिला री स्कूला माए टाबरिया रे HPV टीका लगाया जा रहा है। लीग रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह बतायो के ओ टीको टाबरिया सारू सुरक्षा कवच रो काम कर रहे है।
4: जो HPV वैक्सीन है बच्चियों को बाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है। जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग

0: अफोर्ड कर सकते थे जो लोग, वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे। तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
1: आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राख्या जावन वाला 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए 51,000 रूबत्ता नौजवाना ने नौकरी लागन रा कागजात सौंपेला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत और करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई तय करावन रा हुक्म दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लारला 12 साल माए राजस्थान माए रेलाऊ जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेजी विकास फियो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने सगला भाया और बाया ने रणवीर भाई रा घने मानसून राम राम। भाया जद भी चौपाल मतावा कामरी बाता हूँती रहे हमार इन दिना में देखा हाँ तो अणुता तावड़िया तपे लुआ बाजे अपन आपना बडेरा कहता हा कि भाई आंध्या बादन सू लुआ बादन सू जमीन ने पाण लागे जमीन निरोगी हुए तो प्रकृति की चीज़ा है रुतो तो होड़ी चौखी लागे और इन टाइम रे माने गर्मी तो पड़नी चाहिए जद गर्मी पड़ी जद ही है जो जमान हो रुत में एक मेरो बताना है कि भाई गर्मी तो है वो लगातार इन टाइम में पड़ी अपने खासकर जिका अपना अनबोल पशु है वारो ध्यान रखना जरूरी है। और देखो कई तरह की सरकार एड योजना है आज अपन बात कर रहे हैं भाया राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी कि NLM भारत सरकार रे मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही आ एक खास योजना है। इनका उद्देश्य गांवारे क्षेत्र माने पशुपालन मुर्गी पालन और चारा उत्पादन ने बढ़ाओ देर रोजगार बढ़ानो और किसानारी आय में बढ़ोतरी करना है। इन जकी राष्ट्रीय पशुधन मिशन है इन योजना रा जका लक्ष्य है और लाभ री बात करा तो उद्यमता विकास जकर माने इन योजना तहत भेड़ बकरी सुअर मुर्गी पालन जड़ी इकाइयां की स्थापना माते 50% ताई यानी कि 25 लाख 50 लाख तक वित्तीय सहायता सब्सिडी दी रही है। नस्ल सुधार की बात करा तो पशुओं की उत्पादकता जहाँ मांस है अंडा है ऊन है बकरी दूध है बदावण सारू आनुवंशिक सुधार और नस्ल सुधार रे वास्ते बुनियादी ढांचो तैयार करी जे। चारा विकास की बात करा तो प्रमाणित चारे रे उत्पादन और साइलेज निर्माण जड़ी इकाइया ने प्रोत्साहित करी जे। इन राष्ट्रीय पशुधन मिशन जकी योजना है इनकी पात्रता और अनुदान यानी कि सब्सिडी की बात करा तो भाई कौन है जो उद्यम लगा सके कौन है जो ले सके अनुदान तो पात्रता रमायने व्यक्ति किसान उत्पादक संगठन स्वयं सहायता समूह और सेक्शन 8 कंपनियां इन वास्ते पात्र है। सब्सिडी को प्रारूप है यानी कि कुल परियोजना लागत रो 50% हिस्सो यानी कि आधो हिस्सो कैपिटल सब्सिडी अनुदान रे रूप में दियो जावे जबकि शेष 10% लाभार्थी रो योगदान और 40% बैंक ऋण होया करे। आवेदन प्रक्रिया की बात करा तो जिका इच्छुक उद्यमी है और पशुपालक है सीधा राष्ट्रीय पशुधन मिशन आधिकारिक वेबसाइट मत जा और ऑनलाइन है जो आवेदन कर सके है। अतः भया पशुधन मिशनरी बात हुई राष्ट्रीय पशुधन मिशन।

0: को चलायो है सरकारी तरफों बिन्नी बातें हुई। और गांवां रे माने जावां हार कई तरह री जानकारियां किसान भाई देवे, कदी खेती री जानकारियां मिले आपा ने तो कदी है जो को दूजी जानकारियां मिले। इन भांत मैं है जो को आज एक गौंतुर करियो और बट मन जका किसान भाई मिलिया बहु जकी हताई हुई बे आपरा हम चार बताया वह आप तय पूक्ति करा तो लो हुणो।
1: आज एक किसान भाई मिलिया जका हूं हताई करा। राम राम सा।
2: राम राम सा। राम राम सा।
1: कई नाम आपरो?
2: मारो नाम छेलू सिंह।
1: छेलू सिंह जी गांव
2: जाखाणी।
1: जाखाणी गांव रा रेवण नाला हो तो कई डाण्याम रो हो? गांव में
2: डाण्याम।
1: डाण्याम रो? डाण्याम पहली रहता हा का अब?
2: शुरुआत में गांव में रहता पर बस डाण्याट गांव में ठंडी हो जना हो गया डाण्याम।
1: बस डाण्याम गया आप? कोई फायदो डाणी में रहने रो?
2: घणो ही फायदो। धन पशु और हर तरह खेती हो
1: भाई। धन पशु हो रहे वे?
2: हो रहे वे। आदमी भी हो रहे वे। किसान कोई भी हो जो भाई रे बुरी मात्र मुसर को वे नहीं हो रहा।
1: खुली हवा?
2: खुली।
1: खेती केड़ी वे?
2: खेती तो बिरन ही वे ठीक ही वे।
1: बरसात?
2: बरसात
1: तो हमके कहीं बरसात हुई?
2: बरसात थोड़ी बहुत हुई है बार बार सी। वही तो खेती कौन करे
1: भाई? थोड़ी हुई
2: आगत
1: थोड़ी बरसात में कोई फायदा हुई हो?
2: फायदे तो ठीक है। एक भर्तियां आ गई जटे बाजारी पे टैंकर लग गया बटे तीन चार से काम अर्ग लोगों ने
1: भाई। तलाव में पानी आयो?
2: आयो।
1: तो तलाव और पानी कहीं पीण ने काम आवे?
2: पीण ने बिल्कुल।
1: कितना महीना तक तलाव में पानी रहे?
2: चौकी बरसात में भरी जाए नाडी जाना तो छः सात महीने तक नीटे को महीने दो महीनों गर्मियों मौसम जो नेरण आवी
1: तो कहीं बरसात टाइम में भरी जाए?
2: बरसात टाइम नाड़ी तो भरी जाए टांका में भी आवे पानी।
1: तलाव री भी कहीं सार संभाल रखनी पड़े?
2: जोरदार एकदम गांव पूरी ने रखनी पड़े।
1: ओ की कर
2: गांव री उगी जावे अगोर री जो बुई है हिणियो है कीपड़ो है बोल्डी है जाड़का है सब है बढ़ जावे
1: भाई। तलाव रो जको लंबो चौड़ो बारे रो अगोर है?
2: अगोर है बीरो बेर सपे उगी जावे
1: बिन साफ सुथरो रखनो पड़े।
2: रखनो पड़े बीरी बाद में नाड़ी मिट्टी वे तो संदूकर पर आबे भी गांव रो भी कडावे
1: मिट्टी भी कडानी पड़े। तो पानी पर तलाव में साफ आवे?
2: एकदम साफ।
1: एकदम से आप पछे ज्या पशु और आवे जने बरसात जगह टाइम पानी भरी जावे बी टाइम में भी कोई सफाई रहे?
2: रहे
1: भाई बी टाइम आदमी रहे?
2: आदमी रहे राख देव गांव रा
1: जो को रुखाली राखे?
2: रुखाली राखे पोटा नाग दे बारे जो कोई टिंग टाबन बन को देन मा
1: भाई पानी है जो साफ सुथरो
2: साफ सुथरे को टैंकर भरे तो गूंट गाड़े जब कटे है कौन सा टैंकर भर बिन मा को देन देन टायर
1: ओ
2: लाइनो आप लंबी लाइनो बारे भरो
1: भाई टैंकर है जो बारे भरे पानी साफ
2: साफ रहे।
1: तो चौमासेरी बरसात खेती केड़ी केड़ी वे?
2: खेती तो मैं देखो मूंग उजे वे मोट भी उजे वे गवार भी वे तिल भी वे बाजरी भी वे
1: भाई एक खेतियां वे
2: एक खेतियां
1: हमें जोरदार फसल किसी वे फसल
2: अब सब बढ़िया था हमने तटे यहाँ के पहला बाजरी नहीं माने अभी उनसे क्या पता आजकल लोग मूंग तिल उनसे भवाली बाउंड हो गया
1: भाई। आजकल कई नकदी फसल
2: बस पाँच रुपया
1: बाउंड लाग गया तो खेती मान जहाँ देखा आपा के भाई बिरखा हुई जन खेती करो?
2: बिल्कुल
1: खेती। अब देखो पहले तो छेलू सिंह जी आपा देखो ऊंटा में ऊंती हीर बलदा में ऊंती हीर आज कल हमें
2: अब तो ट्रैक्टर हुए मशीनों
1: ट्रैक्टर हूँ तो ट्रैक्टर रखो घर रोई?
2: हाँ है ट्रैक्टर।
1: कितने एक साल हूँ
2: ट्रैक्टर तो करीब करीब गया पंद्रह बीस साल
1: पंद्रह बीस साल हूँ रखो ट्रैक्टर ही बात करा छेलू सिंह जी तो मशीनरी चाहे किसी वो जैसे देखो खास कर खेती में काम आवे तो खेती में काम तो देखो बिरका हुए आवे पर जितने पचे
2: आठ दिन वहाँ छोड़ दो बने बेस और हम कहीं हाल हाल मर रंग चीजे
1: भाई हार हम बाल आठ दिन रखी उड़ी बत्ती
2: बत्ती है वही लूं सोपर रख दो हम सीजन दा बिरानी वाली है बाकी तो कहीं है को नहीं
1: और सीजन को नहीं
2: वहाँ बारह महीनों पाता जोड़ना पड़े जितने बने वही लूं सोपर बाटा मात रख दो हाल मल करो और बरसात होगी देखो महीनों पहले वहाँ पर गरीस दरीस करना है एकदम टका टक्कर परार
1: कपड़ो
2: मारना चाहिए ऑयल पानी देखना चाहिए
1: कई बार सेलू सिंह जी आप देख हाँ के मार्ग में बहुता बहुता है जो इंजन गर्म हो गयो और ट्रैक्टर पर रुक गयो और एडी मुसीबत आवे
2: देखो देखभाल कर
1: भाई देखभाल नहीं कर देना
2: समस्या आवे देखभाल नहीं कर देना आवे अरे देखभाल कर देना आवे को
1: भाई पानी भी पूरा रहनो ऑयल पर बदलनी बात करा तो कितने टाइम बदली टाइम
2: देखो दो डोल 500 लीटर डीजल बाल पर ऑयल चेंज कराओ तो इंजन बढ़िया रहे
1: भाई 500 लीटर है जो को
2: डीजल बाल एरा पर चेंज कराओ तो इंजन

0: बढ़िया रहे, टेट सुरक्षित रहे एकदम। हाँ
1: सुरक्षित रहे, ईंधन एकदम सही सलामत रहे।
0: सही सलामत रहे।
1: अतसा जोरदार बात। और खेती रहा जगह कई तरह रहा औजार है, ट्रैक्टर लारे पास कहीं कहीं खेती में औजार सही जाए।
0: अब खेती में तो कल्टी सही जे, तो यही सही जे, रोई सही जे, प्लव भी सही जे,
1: ओ
0: तोता कल्टी वबा भी सही जे, सीडल आवे हम मतलब बीज नाले आजकल उबा ही सही जे।
1: तो ये तो घनी तरह रहा हुआ न्यू।
0: घना तरह तमें जहाँ अलग अलग फैसिलिटी होगी होरा पो गयो। पहला तो आदमी बीज था बीज,
1: भाई पहला तो जो कल्टी आउती
0: हाँ
1: कल्टी माते आदमी बैठ बीज तो
0: बैठ बीज था दो
1: एरा में
0: हमें तो मत यार बीज गाल दो और टाइम दे कर बैठ जो हो जो कुदरा के
1: ओ जकी बाका शिडल।
0: सीडल
1: बीज मते बीजी जे।
0: मत ही खाद बीज नहीं वे तो बीज बीज न वे तो जो भी हो मत ही
1: ओ
0: बीज।
1: बी में पच कहीं हीर को पड़ जावे।
0: बीम देखो वो तो मैं भी चलाउन माते ड्रोर माते जाने जना तो सही पड़ गया यार।
1: ओ
0: कोई नू ड्रोर वे जना 5 किलो नागनो बर 10 किलो हीर का दे
1: ओ आ भी हो
0: आ
1: जावे
0: भी हो जाए
1: भाई, जानकारी जरूरी। बीम
0: जानकारी
1: पच
0: जरूर
1: कोई चिन्ह करी उड़ो हुए।
0: हुए भाई। एक नम जीरे माते बादरी पानी चीजे
1: हाँ
0: ये थोड़ी जाडी बाद आगत में हुई आप तो जीरे मत नहीं पानी एक नंबर में पानी चीजे
1: ओ
0: बाद एक नंबर लाइगड़ हुआ अगला अलग अलग नंबर 8 नंबर तक है
1: ओहो
0: यार। मोट बना हुआ अपा ने तो 5 माते 6 माते भी बाद दो। मूंग बना हुआ तो 7 माते 8 माते बाद दो।
1: कोई
0: गंवार भी
1: न्यारा न्यारा है जो कुछ चिन्ह है,
0: चिन्ह है
1: यार न्यारो न्यारो ही बीज पड़े हैं
0: बस।
1: तो ये सब वो तो सा जोरदार काम है। और जो हैरा है तबिया है आधे दिन बारी हिफाजत की कर रखनी।
0: 8 दिन ही है मैंने ऑयल सोप रख दो आप भाटा मत खड़ा कर दिया रख दिया। एक बात है पास सीजन आओ जगह पहले आप ग्रीस द्रीस कर पर महीनों बसवा दूँ पहला या भाई हम आप बरसात हुई जी 10 दिन 5 दिन तो आप जोड़ते ही वादे ना पारे दिक्कत हो आवे
1: भाई पहले सही सलामत रखी उड़ा वह
0: जना।
1: जन मेरी पे तो उम्र भी ज्यादा।
0: ओ बिल्कुल भाई 10 साल साल तो 15 साल हाँ
1: ओ भाई तो फर्क रही,
0: हाल
1: सार
0: मार
1: संभाल रखी
0: बिल्कुल रहे
1: और जहाँ अणुता तावड़िया तपे गर्मी है तो इस टाइम रे माने जो देखो आपा ने तो गर्मी लागे पशुआ नहीं लागे मशीनरी में कहीं छाया चाहिए।
0: बिल्कुल सही जी सया वेदना बोल उम्र बढ़े
1: ओ
0: सोको रे फूट रे एक बात है हर तरह कलर उड़े को नहीं ऐसा बलाने का व्हीकल बहुत बढ़िया
1: ओहो
0: तावड़ देखो के कोई चीज़ हो ना सी भी
1: नाश हुए जन थे भी ट्रैक्टर ने राखण ने कोई चिया करी उड़ी।
0: हाँ है सब पकड़ उड़े बिर बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली टैंकर
1: ओ
0: और
1: ऐसी जहाँ है जो
0: ऐसी जगह
1: बिर माए रखो।
0: माओ
1: अब दूजा भाई जका भी खेती रा साधन रखे है बाने आप कहीं कहना चाहो कि भाई की कर सार संभाल राखनी।
0: भाई हाल माल यहाँ बढ़िया रखे हाल माल देना आग यार खर्चो को हुए और भी यार 5 साल साल तो भाई 10 साल साल जाए 10 साल तो 15 साल जाए बारह रहा कहाँ पाँच यहाँ जरा बहुत पसंद है साहब हुई कोई उन कलर उड़ जाए या भाई बीमा कोई ग्रीस ग्रीस कर उड़े तो बहुत आवड़े पल कलर निकल जाए
1: और टायर आमाते असर पड़ेगा।
0: बिल्कुल पड़े तावड़ी नाश हुए टायर यार
1: टायर भी खराब हुए
0: खराब हो। हाँ
1: भाई, कई बातें हैं जो कोई इज्जत राखने को बत्ती हाल है।
0: हाल माल रखना बतिया ले
1: तो जका भाई सुन रहा है वाने जका खेती रा औजार रखे है वाने भी है जो को सार संभाल
0: राखनी
1: राखनी
0: चाहिए
1: चाहिए। और मैं बिरखाऊँ पहली है जो को और कहीं हावचेती राखो जका बिरखाऊँ ताई है जो को जुताई करने लाग जाऊँ।
0: अब तो यहाँ राखनी पड़ी के पहला तो हमें पंपड़ मार डीजल डालर नेड़ो मिल जाए तो हमें तो हाथों इस तो डीजल डालो होल लीटर करो सब 200 करो सब 300 करो के बैठा घर की खेती थोड़ी करा
1: भाई
0: लिया
1: तेल भी टाइम में चाहिए।
0: सही जी तेल
1: इन
0: भी रुपा
1: अलावा
0: कहूँ
1: कई बार देखो के रिपेयरिंग मांगे हर चीज जकी है मशीनरी तैयार करनी पड़े। बा भी कई बार देखा के बिरखाऊ पहले है जो ट्रैक्टर ले ले भाई जावे मिस्त्रियां करने।
0: हम थोड़ी बहुत मिस्टेक वेदन बे पहला कड़ा ले सीजन दुख दे नहीं जन बे पहला आप कोई रिलीफ ठहरे कोई रे इंजन हेरे गर्मी लावे तो भी रेडर सफाई करावे रेडर कोई लीक हुए तो सही करावे कोई छोटो मोटो और भी काम है तो करा भाई अपना सीजन में जोड़ता ही मैं खोटी नहीं मैं
1: भाई जकी भी खामी है मशीनरी
0: हाँ
1: माने
0: भाई
1: बस
0: कर
1: सीजन पहले तैयार करा लेनी
0: करानी पड़े
1: आप प्रकरण मतलब
0: हाँ
1: वो है
0: बिल्कुल
1: जके हूँ कहीं है कि बिरखा हूँ ताई
0: जोड़ता ही वे
1: जोतता ही हुए पच जो ए औजार जका है अरे न्यारी न्यारी पच रेटा में बेवे का एक ही।
0: देखो भाई तो अलग अलग भाई रेट में कल्टी अलग भाई हेरो अलग भाई तवी अलग भाई अलग अलग भी है शाम हुआ बता दी भाई भाव भाव
1: पहले अपन पुराने टाइम में तो देखो अड़ी लोग ज्यादा बोवा लेता हमें कहीं ज्यादा बेवे
0: अब ज्यादा तभी चले
1: कई कारण।
0: तभी वहाँ अब अगला ही खलनिया कंड हुई ना खलनी कर ले या तभी धान बढ़िया हुए थोड़ो
1: ओ
0: कल्टी हूँ तो यूँ धान बढ़िया
1: तभी कहीं गहरी लागे।
0: लागे गहरी जमीन पलटो लाग गया खाद नीचे दब गया पर धान उगे जन बाजड़ खाद रे मा जावे जरा धान बढ़िया रहे एक हर तरह जमीन पलटो लाग गया कचरो फूस जो भी है जो बिरमा गड़ गया
1: भाई गहरी जुताई हुए भी
0: हाँ तो ही है बाल
1: जने जमीन भी पलटी जावे
0: पलटी जाए
1: और खाद और है बा भी जमीन में जा पड़े
0: जमीन जो तुम गल जाओ ऊपर रेत आ जाए ना गल जाओ
1: गल जावे खाद। ए कई फायदा है जने लोग है जो तभी ज्यादा
0: तभी
1: खड़ा
0: ज्यादा खड़ा
1: ए कई बार पहले अपन देखता आगे भाई शूट करने कई कई दिन अपन किसान भाई जाऊं ता
0: दस दस
1: बेड़ा में है कि नहीं।
0: अब नहीं
1: तो कई कारण हुयो
0: अब कारण तो कहीं हुआ है कि जी मतलब हमें हो रहा।

0: काम करना चाहे कौन लोग
1: फोरा रहना चाहे
0: बस बिल्कुल आबाद। और बाकी पहला लोग 10 10 दिन तक हुड़ करता कणा
1: होता।
0: देव था करे जली और धान तकड़ो। अबे वाह हिणिया ने तो लोग बाले
1: भाई हमें यूं देख लेवे के जुताई तो ट्रैक्टर हूं जी
0: बस ठेठू जी ने ठेठू दोटी जी रुवा
1: दोटी जी
0: बस
1: जन है जो मेहनत कम कर रहा
0: बिल्कुल।
1: है। मेहनत करने रात फायदा है
0: पहला तो मैं तो फायदा बना अब तो ठेठ रहा हूँ फायदा कहीं वाह देख ले गए घंटो लाग जी 1.5 घंटो लाग गई 1500 रुपये लाग गया 1000 रुपये घंटे में पैदा 1500 रुपये लाग गए 1.5 घंटे लाग गई 2 घंटे लाग गए देखे ऊटी गई हिणिया बाद नकी हो के
1: भाई।
0: फिर
1: इतनी मेहनत है जो कौन करी
0: हाँ कौन करी बाहर डीर बेला करना
1: भाई आलसी हो गया लोग।
0: आलसी हो गया
1: पहला जितनी मेहनत कौन
0: कौन
1: पहला तो देखो एड़ तावड़ी में है जो को अपन किसान भाई काम करता हमें करे
0: करता
1: कि नहीं
0: अब नहीं करे अब तो 9 बजे बाद में खेत में को जाए।
1: कई कारण
0: अब कारण तो हो रहा पियो कौन थे कूलर पंखा चालने
1: तो कहीं कमजोरी आई है
0: कमजोरी तो वजी थी
1: हुए जीती भाई मेहनत करता हाजन मजबूत रहता
0: मजबूत रहता शरीर सही रहता
1: पसीनो ही घणो ही तो
0: घणो ही बींज जाता पूरा।
1: ओहो। और हमें पता है ठंडी हवा ज्यादा लेवे दिन कहीं आलसी
0: अब तो आलसी है ठंडी वाली है बारी की है कहाँ बढ़ती लागी कहाँ और की हुई कहाँ भी हूँ पर दही जे कौन के मर्दर मास कौन कर हारे करा मन
1: भाई ज्यादा ठंडी हवा ले जने ज्यादा आलसी हो जाए
0: आलसी जी
1: इन मतलब मेहनत करनी है जो जरूरी है।
0: जरूरी है शरीर लिए सही है।
1: तो वासा चलो सिंह जी आपका विचार बताया हो आपने दिन।
2: हाँ तो भैया ए तो हा गांव जा खाने यार चेलू सिंह जकी है जो आपरी अतएं बताई ए ट्रैक्टरी कृषि यंत्रा रो है जो को सार संभाल ए रख रखाव की कर रखा और जे रख रखाव राखा तो वो ज्यादा टाइम तक चाल ही सही सलामत रही। और भया देखा हाँ के जो मिनखारी आबादी बढ़ी संख्या बढ़ी जो ही हर चीज़ री खपत बढ़ी भई अनाज भी बतो लागन लागो घी भी बतो लागे दूध भी बतो लागे हर चीज़ है जो बतो लागे इन वास्ते घी दूध री पूर्ति बराबर बनी रहे इन वास्ते सरकार एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलायो। पहले अपना राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करी और हमें बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। भारत सरकार रो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू करी दी आय की प्रमुख योजना है। इन जो को उद्देश्य है देश में स्वदेशी यानी कि देसी नस्ल की गाया भैंसियाँ रो वैज्ञानिक तरीके संरक्षण संवर्धन और विकास करना है। आ योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना रो एक महत्वपूर्ण हिस्सों है और जो को राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इनका उद्देश्य की बात करा तो इनमें है नस्ल सुधार यानी कि उन्नत तकनीक जो IVF है तकनीक है और सेक्स सर्टेड सीमेन उपयोग कर उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाला दुधारू पशु तैयार करना दूध उत्पादन में बढ़ोतरी जहाँ देसी नस्लों की उत्पादकता दूध देवनी है जो हमारी क्षमता बढ़ाना और उद्देश्य माने है कृत्रिम गर्भाधान यानी कि कृत्रिम गर्भाधान सेवा माने घर घर तक पहुँचाना और प्रशिक्षित मल्टीपर्पज तकनीशियनों है जो को तकनीशियनों तैयार करना पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी करनी छोटा और सीमांत किसाना और ग्रामीण महिलाओं वास्ते डेयरी व्यवसाय ने ज्यादा लाभकारी बनाना। लाभ और सब्सिडी बारे बात करा तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो को है इन कई लाभ भी है और सब्सिडी भी इन मायने है। नस्ल गुणन फार्म किसाना और उद्यमा ने स्वदेशी नस्ल का ब्रीडिंग फार्म खोलन वास्ते लागत रो 50% ताई यानी कि अधिकतम 2 करोड़ ताई पूंजीगत सब्सिडी है जो प्रदान करी जाए। सेक्स शॉर्टेड सीमेन यानी कि बच्चिया मादा पैदा होने की संभावना बढ़ाने वाले सीमेन की लागत माते किसानों ने 50% तक की सब्सिडी दी जाए। IVF तकनीक यानी कि प्रति IVF गर्भावस्था माते किसानों ने प्रोत्साहन राशि है जो प्रदान करी जाए। इनके अलावा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी राखी जुड़ो है इन मिशन के तहत भारत सरकार हर साल राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार देवे है और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ का डेयरी किसान है कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन है और स्वदेशी नस्ल पालन वाली जिकी सर्वश्रेष्ठ डेयरिया है बने प्रोत्साहित करने वास्ते प्रदान करियो जावे। इन आवेदन की बात करा तो जे आप इन मिशन और इनमें मिलने वाली सब्सिडी रो लाभ उठाना चाहो तो आपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र या जिला पशुपालन विभाग है जो को संपर्क कर सको। इनके अलावा केंद्र सरकार जो की आधिकारिक पशुपालन और डेयरी विभाग की वेबसाइट।

केसर डुड़गी गारा में, ओम प्रकाश खुड़खुड़िया रो गायडो बदन भया आप तई पूगियो, और हमें बातें करा नागौर मंडी में बाजार भाव री। आज रा बाजार भाव एंड भांत रिया, मूंग बिक्या है 5,000 लेने 8,000 रुपया कुंटल तई, और गंवार री बोली लागी है 5,000 लेने 5,600 रुपया कुंटल। जीरे रा आज भाव रिया है 14,000 लेने 20,000 रुपया तई, और सौ पया बिकी है 7,000 लेने 13,000 रुपया कुंटल। इणिज भांत ईसब गोलरी बोली 11,000 लेने 14,400 रुपया कुंटल तई लागी, और असालियो बिकियो है 5,000 लेने 6,100 रुपया कुंटल। दाणा मेथी रे भाव 5,000 लेने 5,800 रुपया कुंटल तई रिया, और सिंधी सुवेरी बोली 6,000-7,000 रुपया कुंटल तई लागी। तारा मेरे भाव 4,900 लेने 5,900 रुपया कुंटल तई रिया, और जमार बिकी है 3,000 लेने 4,600 रुपया कुंटल तई। काला तिल बिकिया है 8,000 लेने 9,000 रुपया कुंटल, और सफ़ेद तिल 9,000 लेने 10,000 तई बिकिया। चिनारी बोली 4,800 लेने 5,300 तई लागी, और सरसों रा भाव रिया है 7,100 रुपया कुंटल। ए तो हुआ भया नागौर मंडी रा आज रा भाव, और हमें देखा हाँ कि गर्मी री जकी रुत भी में रुतो रुत गर्मी चौखी लागे, पर हावचेती आपने राखनी जरूरी, आपने पशुधन रो भी ध्यान रखनो। और किसान भाई ने आई अर्ज है कि भया काम धंधो तो टाइमो टाइम करना ही है, सुबह शाम है जो ठंडी टाइम रे में काम करो, और दिन में अगर जरूरी हुए तो हावचेती है जो कोई गाँव गौंतरो करनो पड़े तो भी है जो कहीं खा पी ए भूखे पेट नहीं पानी नहीं है जो बुड़की हागे ले, और पचे है जो गाँव गौंतरो कर दियो, एड़ी है जो हावचेती रखनी जरूरी। हमें घड़ी आमी जो वहाँ तो घड़ी करे इशारो अपन आज रे खेतीबाड़ी कार्यक्रम टाइम यो 28 पूरो। आपरा रणवीर भाई ने दिराव से करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सोनी IR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम, ये NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है उमंग। तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
2: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
2: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
2: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
2: जी
1: हाँ, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
2: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
2: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
2: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
2: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
3: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?

0: अच्छा गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
1: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
0: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है मेरे जीवन का।
1: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ हाँ, उठो आजा, आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
0: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
1: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। हाँ। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
0: शायद आप ठीक कहते हैं। हाँ। ये हमारे बच्चे ही हैं।
1: हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
0: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
1: हाँ ये तो है।
0: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
1: सही कहा।
0: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हाँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
0: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
0: आजी सुनिए।
1: हाँ।
0: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
1: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
0: हाँ।
1: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
0: अरे अरे इसको भी डालो।
1: हाँ हाँ, ये देखो देखो देखो कितना छोटा था ना, ये पौधा कितना। हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
0: प्यारा लग रहा है। हाँ।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
1: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है, कितने अच्छे

0: लग रहे हैं ना पौधे।
1: हाँ।
0: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
0: हाँ।
1: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
2: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
3: ऐसा लग रहा है जैसे हमारा शहर हो।
4: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
5: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
4: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
4: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा बेहाब में प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप NewsOnAIR और इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए देश और दुनिया में सुन रहे हैं। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गजलें और कवालियों का प्रोग्राम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म फकीरा के इस गीत इस कवाली से। इसको आवाज़ दिए किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और अजीज़ नाजा ने।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चेयरमैन चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गज़लें और कवालियों का कवालियाँ। चलिए कार्यक्रम की अगली कवाली सुनते हैं, फिल्म अमर अकबर एंथनी से। इसको आवाज़ दिया है मोहम्मद रफ़ी और उनके साथियों ने।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

दोस्तों कार्यक्रम की अगली कवाली सुनते हैं फिल्म लैला मजनू से। इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

मोहम्मद रफ़ी और आसफ़ भोंसले की आवाज़ों में ये कव्वाली आप सुन रहे थे फिल्म धर्म से। कार्यक्रम की अगली और आखिरी जो प्रस्तुति है वो गज़ल के रूप में है, क्योंकि प्रोग्राम ही गज़ल और कव्वालियों का है। तो आखिर में सुनते हैं ये गज़ल, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम ही गज़ल है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गज़लें और कव्वालियों का प्रोग्राम। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गाने नए जमाने के। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म इश्क इन पेरिस।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपकी सुन रहे थे फिल्म जैकपॉट से। इससे पहले जो गीत आपने सुना था उसको हमने लिया था फिल्म इश्क क्लिक से। उस गीत को आवाज़ दी थी अंकित तिवारी और उनका साथ दे रही थी हरीचा नारायण। चलिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म जग्गा जासूस से। आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और अंकित मिश्रा ने।

0: दोस्तों समय अभाव के कारण ये गीत आप पूरे सुन नहीं पाए, इसका हमें खेद है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए जमाने के। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के छेमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया इंतजार कीजिए।
1: साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर बढ़ाया गया है।
3: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
2: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
3: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
5: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
2: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
6: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
2: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कागज कलम नहीं इस बार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन सकते हैं। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मृताली सिंह की आवाज़ों में चंद गजलें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गज़लों का प्रोग्राम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में कुछ गज़लें। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफ एम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है विविध भारती।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अब लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मुकेश। फिल्म का नाम है संगम। रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, रोशन का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ताजमहल के लिए।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घीउन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोकधुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये एक प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 8:49 पर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।